दुख कने कोई न जाने तुमराया अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगिरी तुमरा सूतर तारी तुम ते हो ऐसो आगे अकार

0: सुनिहार सत्रिया काल।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: जाचक जाच जाचक जाच नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दास ताकी सरनाई जाते बिरथा ना
1: कोई
0: रे गरीब निवाज आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर सतगुरु जी दी साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी दूर दरेडे माई भाई गुरसिख घरां विच वी गुरु की अमृत बाणी सरवण करके जीवन दा आनंद प्राप्त करदे ने वड्डियां भागां वाले ओ कर्मां वाले ओ खालसा जी आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर संगत करन दा बाणी सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। दिन चढ़दा है बतीत हो जांदा है जिन्नू गरीब निवाज कहिंदे ने जो दिन आवै सो दिन जा ही चला जांदा है रात आ जांदी है दिन ते सर पर पौसी रात रहण गई फिर होए प्रभात दिन भी निकल जांदा है रात भी निकल जांदी है दिन ते रात दियां विद्वान तकरीबन 60 घड़ियां मानदे ने 60 घड़ियां दिन ते रात दियां 60 घड़ियां विच पूरा हो जांदा है पर मेरे गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने वड्डी कृपा कीती है साध संगत विच आके हां जी साध संगत विच आके 60 घड़ियां दी जरूरत नहीं केवल एक घड़ी दी जरूरत है एक घड़ी गुरु दी संगत मिल जावे गुरु प्यारियां दी संगत मिल जावे फिर अर्ज करा दिन गया रात आई रात गई दिन आया दिन रात बदलदे जांदे ने श्वास बदलदे जांदे ने शरीर छिजदा जांदा है भाई गुरुदास साहिब जी कहिंदे 60 घड़ियां ने 60 घड़ियां तो कारोबार 60 घड़ियां कारोबार करी चल जो करना करी चल पर 60वीं घड़ी जड़ी है गुरु दे लेखे ला दे। श्री मान भाई गुरुदास साहिब जी ने कबित बड़ा प्यारा सांझा कीता है वो तुहाडे नाल सांझा करन दा जतन करा कहिंदे जैसे बोझ भरी नाव आंगरी दोए बार होए एक बित मैं तां तुहाडे नाल सांझा कर लगा भी साडा संगत करन दा रुझा बन जावे संगत विच बैठन दा सुभाग बन जावे जां घरां विच जदों तुसीं कथा कीर्तन सरवण करदे हो उस वेले चौंकड़ा मार के जिवें जिवें तुहाडे कोल साधन है तिवें तिवें गुरु की बाणी नूं सरवण कीता जावे वह घड़ियां लेखे लग जांदियां ने। भाई गुरुदास साहिब जी कहिंदे जैसे बोझ भरी नाव आंगरी दोए बार होए नाव मींज हुंदा जी बेड़ा बेड़ी सवारियां दी जनता दी भरी हुई है बहुत मनुख उहदे विच बैठे ने समुंदर विच जा रही है छल्ला मर रहा है पानी सिर्फ दो उंगलां बार है जदों छल वजदी है ते बेड़ा डावांडोल हुंदा बेड़े विच बैठे हुए सारे कहिंदे जी रब करे पार हो जाइए इह समुंदर लंघ जाइए जिस वेले वगदा दरिया समुंदर पार लंघ जांदे ने उह बेड़े दे सारे सवार जिहड़े यात्री बड़े खुश हुंदे ने कहिंदे जी जीवन मिल गया असीं बाहर निकल गए हां जैसे बोझ भरी नाव आंगुरी दोए बार होए पार पर पूर सब है कुशल बेहत है जैसे एक हारी एक करी पौक साला बैठ भोजन के बिंजन स्वाद के आघात है जिवे एक घड़ी का समा स्वादले पदार्थ छक के आनंद की प्राप्ति हो जाती है कहिंदे आनंद मिल जांदा है जीव खुश हो जांदा है जैसे एक घरी पाक साला बैठ भोजन के बिंजन स्वाद के आघात है जैसे राज द्वार जाए करत जोहार जन एक घरी पाछे देश भोगता होए खात है आठ पहर में 60 घरी एक घरी साध समागम कर निज कर जात है ऐसे भाई गुरुदास साहिब जी कहिंदे आठ पैर में 60 घड़ी 60 घड़ियां ने एक घड़ी साध समागम करे कहिंदे एक घड़ी तकरीबन 24 मिनट गुरु दी संगत विच आके जप लवे सतनाम श्री
1: वाहिगुरु
0: जीवन दा बेड़ा पार हो जांदा जे ताही तां गरीब निवास सतगुरु जी ने बचन कीते सन ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰੇ ਆਠ ਭਰੀ ਆਠ ਪੈਰ ਸਾਠ ਘਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰੀ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇ ਨਿਜ ਕਰ ਜਾਤੈ ਹਰ ਸਿਉ ਜਾਏ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਸੁਖ ਅੰਕ ਨਾਮ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਲਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। 1245 ਅੰਗ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ।

तेरे अगे थाल परोस के आ गया है ते गुरु दा शुकराना करया कर जिस दा दत्ता खावना तिस कहिया सबास जेह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रखमन माहे जिदे पदार्थ कार्य दा शुकर कर नहीं ते त्रिग बन जाना है नहीं ते खादे होए पदार्था ने विकार पैदा कर देने ने त्रिग त्रिग खाया ओ त्रिग त्रिग सोया सोनिया सेजा ते सौरिया है ओ भी त्रिग है त्रिग है त्रिग त्रिग कपड़ा अंग चढ़ाया त्रिग दर्थ है लानत है फटेमू है कहिंदे सोने सोने बस्तर पह रहे हैं ना ते रब दा शुकर कर नहीं तो महाराज कहिंदे ओ भी त्रिग बन जांदे ने त्रिग त्रिग कपड़ अंग चढ़ाया त्रिग प्रीत कुटंब सहत स्यों जित हुण खसम ना पाया कहिंदे ओ कुटंब कबीले नाल प्रीति ते लाई बैठा है ओ भी त्रिग है जे गुरु नाल प्रीति नहीं बनदी इस करके महाराज कहिंदे त्रिग होर भी शब्द बड़ा आउंदा जे जे तू नाम तो सखना है ना गुरु दी सखना गुरु दे संगत तो सखना है तो महाराज कहिंदे ने फिर तेरे नालो पशु चंगा है ओ खल पठे खा के तां दुध दंदा है तू शक्ति पदार्थ छाके कुजील करदा है तो महाराज दे अमृत बाचा ने

0: क्योंकि गुरु के चरणों की शरण में आए नहीं है, गुरु की संगत तो बाहर ही रहे ने, ते गुरु की संगत तो बिना कदे प्रेम पैदा नहीं हुंदा, ते प्रेम तो बिना कदे नहीं जपया जांदा। सतनाम श्री
1: वाहेगुरु।
0: लख जतन कर लो, संगत तो बिना प्रेम पैदा नहीं है, ते प्रेम तो बिना कदे गुरु का नाम नहीं जे। सतगुरां दे अमृत बचन है, कहिंदे चित सिमरन करो। संगत वे जदों बैठदे जे ना, ते सुभाविक चित विच वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु का नाम चेते आ जांदा जे। चित सिमरन करो, संगत विच आके चेता आउंदा जे नाम दा। नैण अवलोकनो, ते नेत्रां नाल मेरे गुरु दे दर्शन हो जांदे ने। संगत विच आके गुरु दे भी दर्शन हो गए, ते संगत दे भी दर्शन हो गए। सरवण बाणी सो जस पूर राखो, ते फिर बैठिया बैठिया कन्ना नाल बाणी भी सुनी जांदे जे। किन्नियां कृपा वरत गईयां ने, चित विच सिमरन आ गया, नेत्रां नाल गुरु दे दीदार हो गए ने, कन्ना नाल गुरु दी बाणी सरवण मिल गई है। चित सिमरन करो, नैण अवलोकनो, सरवण बाणी सो जस पूर राखो। मन सो मत कर करो, चरण हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घट, मैं तौ मोल महंगी लई जी सट। साध संगत बिना भाव नहीं उपज। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यों, तैज राखो राजा राम मेरी। ते जे संगत तो बारे ने शरण विच नहीं आए, तो महाराज कहिंदे प्राप्ति नहीं है।
1: अग्गै लहै ना दाद।
0: अर्थ हुंदा जी न्याय करना। आम दो बंदे झगड़ पैंदे ने, लड़ पैंदे ने, तीजा बंदा कहिंदा जी साडा न्याय कर दिओ। पातशाह जी कृपा करदे ने, कहिंदे जिहड़े संगत विच आए नी, न्याय ते रब ने करना ना। संगत विच आए नहीं, हाजरी लगी नहीं है, कहिंदे फिर अगला न्याय ना समझी, फिर तां बस आई गल होनी है। पापी कर्म कमावंदे कर दे हाय हाय, कहिंदे फिर इत्थे न्याय ना भाली भी हुण मैनू सुख मिल जावे, दाद भी मैनू सुख मिल जावे। ना ना ना, बिलकुल नहीं है। भाव जिहो जिहा तू बीजिया है, तेवें दा फल तेनो भुगतना पवेगा। आप बीज आपे ही खाओ, जो बीजिया है वो तेनो

0: ठरे आत्मा तपदी बिलिया ठरे आत्मा पाक पवित्र चंदन मू
1: आप सारे राल मेल जपिए तल

तेत कर गावो सोहेला सिवरे सृजनहारो, तुम गावो मेरे निरपाव का सोहेला। हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होय रहाओ, नित नित जीवड़े संभालियन।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सो रहनारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसेमह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए पियावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी।

गुर ए नम है, सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है, अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहि मिटावों, सिमरौ जास विसंबर एकै, नाम जपत अगंत अनेकै, वेद प्राण सिमृत सुदाक्षर

नानक उन संग मोहे उधारू सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माही समाई प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनंत कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन ने चले आसन प्रभ कै सिमरन कमल भिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयु नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार्ग उजात केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पराई अनिक जगन जाय आय सुधार है हर का नाम तत्काल उदार है।

हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तैनाल पछानू। जय महाप्यान तब तबो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छामू। जा त्रिका मन तुझ आकर खै, तै नानक हर हर अमृत बरख। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन किन्नु दान। मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै ब्रत बबे कै। पार जाते हर को ना, हर का नाम जन को मुक्त जुगत। हर कै नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कुआ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। पोत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रकट नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नामु, कामतेन हर हर गुण गामु। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत ऋद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग विड भागी पाईए, संत की सेवा नाम त्याईए। नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूज सनाई हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाय हो मैं कर राती, व्रत नेम करै बहु पाती। नहीं तो राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, महा उदास तपी सरथी वै। गुण माय हुमत प्राण, कनिक सब है वर भूम दान। न्योली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग।

अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण विकोट गवावे। एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहु कहा करे। जिष्ठा कुर्स्यो नाही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व थोग नानक तिन पाया। गंत सब अपनी देरास, खास पीत बरते अन दुलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीता पही को वै, बहुर उसका विश्वास न हो वै। जिसकी वस्ति से आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा मन माथा उसते चौगुन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनिक भांत माया के हित। सर पर होत जान नेत, बिर की छाया स्यों रंग लावे। उबिन से मन पुछतावे, जो दिसे सो चालन हार। लपट रहे होते अंध अंधार, उबटाओ स्यों जो लावे नेहे। ताको हाथ न आवे के हे, मन हर के नाम की बड़ी सुखदाई। कर कृपा नानका भले लाई, मिथ्या तन तन कुटम सुबाया। मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज उवन धन मालु। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती सुभस्त्रा। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रो मोहिमान। मिथ्या पशु पर कर्त गुमान, स्त्री पग सात की सर। नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन पर उपकारा, मिथ्या बास लित विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पाए, सफल दे नानक हर हर नाम ले। व्यर्थि सागत की आर जा, साच बिना कह होत सुचा। व्यर्था नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन व्यर्था बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ। रैत अवर कछ अवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन्म मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पानी तिन प्रभु जाता, नानक कुंजन चरण पुराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पह माने। या पह आप आप करत नबेरा, किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहत, सब क जाने आत्म की रहत। जिस पावत इस लय लड़ लाए, थान थनंतर या सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जपना।

ठाकुर देव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मनवाहे। जे प्रसाद सुगंध तन लाभ है तिसको सिमरत परम गत पाव है। जे प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याग सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसे त्याग कतवर लुभाव है। जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै। जे प्रसाद तुरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावह नानक पद चेती घर जावह। जे प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पार ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकि भगत करे। जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रो प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई। तिस हत्याई जो एक अलख है यहाँ उहाँ नानक तेरी रखै। जे प्रसाद कर है पुन बहुदान मनाठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद र सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पिकै बिस्मा। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख है जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है। सा प्रभ त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता स्योराज। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गाव आए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मातु उत्तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी माया पू कछु न किन्हू लया। जित जित लाभ तित लगै हर नाथ नानक किन कह कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक विनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग कुजल होत साध संग मल सगली कोत। साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटै सो ज्ञान। साध के संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक उपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक। साध की शोभा ब्रह्मा समानी साध के संग गुच्छर मिलै। साध के संग सदा प्रफुल्लै। साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग सब की रेन साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतु तावे साध संग स्थित मन पावे। साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महा पुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैरु साध के संग न भीगा पैरु। साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नाही होताप साधक संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबू तावै साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह। साधक संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुँचै। साध के संग दड़ै सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा। साध के संग पाप ला साधु कै संग पाप लायन। साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम। नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कछ काल।
दर्शन भेट तो होत निहाल, साधक संग कलुख तहरै, साधक संग नरक पर हरै, साधक संग यहाँ वहाँ सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक कुदरै साध सुन रसै, साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साधक संग न मंति बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगै ब्रह्म बीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जाने, जिता सुने तिता बखियाने, साध के उपमा त्यो गुण ते दूर, साध गुमा रही प्रभु, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजेक, ज्यो बसदा को खोदै को चंद लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाई, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी ना तमस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब परमाया, ब्रह्म ज्ञानी ते कच बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी आहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को हो जय महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन बाही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कतिया न जाया दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक उर तार है जो अंतर नाम, सर में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक पर सगल निस्तार है, मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत रंजन दर्स, पर त्रिरूप न पेख नेत्र, साध की टैल सन संगेत, कर न सुने काहू की निंदा, सबते जान आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरय, मन की बासना मन ते टर, इंद्रिय जित पंच दोख ते रह, नानक कूट मध्य को ऐसा परस, वैष्णु सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए नि कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काउबल की चा नहीं बाछ है, केवल भक्त कीर्तन संग्राच्य, मंत्र नेत्र सिमरन गोपाल, सब पर हुवत कृपाल, आप त्रिडावरै नाम जपावै, नानक को वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिन सर सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासंग पापा मलख हुवै, किस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तन अर्पै विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है,
राम नाम मैं सोदै, राम नाम सारस पीवे, पंडित कहबदे जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नयावे, वेद प्राण सिमरत बूझे मूल, सुखम मैं जानै सूल चौ वरना को दे उपदेश, नानुक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, सा सुन पावे जन को, ए कर कृपा अंतर उतारै, बस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व रूप का उखत नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहु जुगत कितै ना पाईए धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परै, सगल संगा तुम उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, रब की आज्ञा तुम हितावै, जीव नोक सो कहावै, तैसा अर्घ तैसा सुख, सदा अनंत नहीं ब्योग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताई साई जुगत नानक को पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखे, तैसा तिन्ना वापे करन करावन, जो प्रभावे सोई फनोक, बसर आप अंतरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म की रंग, जैसी मादे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल, श्लोक उस्तत करै अनेक जानंत न पार अवार, नानक रचना प्रभ रचि भव जनक प्रकार, उस्तपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थ वासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारै, कई कोट कवका विचार है, कई कोट नवत नाम त्यावै, नानक करते कांत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगातम निकोर, कई कोट पर दर्भ को ही रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहि, कई कोट पर देश पर माहि, जित चित लाभ तित चित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए, कई कोट पवन पानी वैश्वंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशियर सून खेतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सुतार है, नानक जिस जिस भाव है, तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरीवे स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किनर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच, सब ते नेर सबूते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीव हमरै, कई कोट बोजूनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट कालै तक पाए, कई कोट कीतनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तह तै राखे, नानक सब किच प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होया सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट काणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक कंकार, कई कोट गिने बपात, प्रभति हुए ब्रह्मा समाता, कंत न जाने कोय आपे आप, नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पै सत सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्मरा सुख सह समावै, अपने जन को सास सास मारी, नान कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करन करन प्रभु कह, दूसर नाही कोई, नान किस बलिहार ने, जल थल मही अल सोएष्ट बदी, करन करावन करन जोग, जुत सिभावे सोई हो, किन में ताप तापन हार, अंत ने किछ पारा वारा, हुक्मे तार तर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे निकरंग प्रकार, कर कर दिखे अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावै मानुख कत पावै, प्रभावै तां पात्र तरावै, प्रभावै बिन सास सिराखै, प्रभावै तां हर गुण भाखै, प्रभावै तां पथ तुधारै, आप करै अपन विचारै, दोहां सिरियां काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो भावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या होयावै,
जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ हुई ता सब किचले, जो तिस भावै सोई करे, अनजान विख्या में रचे, जी जानता अपना बचे, पर में भूला दै जिस आवै, निमक मैं चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपने भग दे, नानक दे जन्ना मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जा का दिस कछु न आवै, तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीश, ताका लिखा न गने जगदीश, जीव बिन सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल ना ही सहात, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई पंथियो, कब हूँ ऊंच नीच में बसै, कब हूँ सोग हरख रंग हसै, कब हूँ निंद छिंद विहार, कहूँ बकाश पयाल, कब हूँ बिता ब्रह्म विचार, नानका मिला बनहार, कबहू नृत करै बात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू माँ क्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू हुए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू पकीरत में आवै, कबहू भला भला कहा वै, ज्यो प्रवरा कहते ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू हुए पंडित करे बखियान, कबहू मुन धारी लावै ध्यान, कब हूँ तट तीर्थ स्नान, कब हूँ सिद्ध साधिक ज्ञान, कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जी, यानि कि जोन पर मैं पर मिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवै निचावे, जो तिस भावे सोई हुए, नानक दूजा वर न कोय, कब उस संगत उपावे, उस स्थान ते बौर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रतिक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जलियाए कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गबन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सतगुरबान, सलोक सुखी बसै मस्कीनी, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टवदी, जिसके अंतराज विमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जान मैं जोवन वंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहा वह, जन्म मरै वो जुण परमा वह, तन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीब भी बसावै, नानकिया मुक्ता गै सुख पावै, धनवंता हुए कर गर भावै, तृण समान का संग न जावै, बोलस कर मानुख ऊपर करयास, फल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जानै बलवंत, किन मैं हुए जाए पसमंत, किसै न बदया अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान, सो जन नानक धर गै परवान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिर तारे, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वरूप फिर अवतार, अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै, हर दर गै को कैसे गवै, आपस को जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व किरें जाका मन होए, कौ नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निचल ना ही चीत, जब लग मोह भगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक को छूटै, सहस खट्टे लग कोट तावै, तृप्त न आवै, माया पाछै पावै, निक भोग भिख्या के करै, न तृप्तावै खप कमरै, बिना संतोख नहीं कोरा जय, सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नान कर जाप, करन करावन करन हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किच किन सु अपने रंग, सब ते दूर सबू कै संग, बूझै देखै करै विवेक, आपे कापे अनेक, मरै न बिन सया वै न जाए, नानक सद ही रहा समाय, उपदेश समझै आप, आपे रचै सब कै साथ, आप किनु अपन विस्तार, सब किछु उसका करने हार, उसते पिन कहो किछु होए, तांत नंतर एक कै सोए, अपने चलताप करने हार, कौतुक करै रंगा पार, मन में मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरु प्रसाद किन्ने बखियानी, सच सच सच सब किन्ना, कूट मधे किन्ने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, असुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कड़का सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सोचन उदरण हार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी, संत कै दुख नार जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुख नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन,
संत कह दुखन सो बाते हीन, संत कहते गुरखन कोई, संत कह दुखन थान प्रस्तो, संत कृपाल कृपा जी कर, नानक संसंग निंदक पीतर है। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कह दुखन काग जो लवै, संतन कह दुखन सर्प जुन पाए, संत कह दुखन त्रिग जुन किरमाए, संतन कह दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कह दुखन सब को चलै, संत कह दुखन ते सब जाए, संत कह दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाय, नान संत पावे तो पीगत पाए, संत का निंदक मात थाई, संत का निंदक टिकन न पाई, संत का निंदक मा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे तो उसका भी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का निमित्त, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख न सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नान संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाहि, अपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी कवरन राखन हार, नानक संत पावै ता लै उबार, संत का दुखी ओ बिल लाए, ज्यों जल बिहू मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पाव कींदन नहीं त्रापै, संत का दुखी चुटै केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जुत पावै सुई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पुजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत के दुख न तृष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया किरत न मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसक्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की सत करो दिन रात, सह ते आवो सास गिरा, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोतिया, अपना खिलाफ करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिष्णु कृपा करे तिसा पनाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक, तज हो से आनप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रख हो, नानक दुख परम पहु जाए, पदी मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बौर तृष्णा लाग गए आए, मारे रखे को आप, मानु कह कुछ ना ही हाथ, जिसका कुंभू सुख होए, जिसका नाम रखंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघन लागे कोई, उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन से सब सांग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जल मत्था, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, उसे धनवंत गणी संसार, मन तन मुख भूलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक दिना निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सार संग हर हर जस कैत, सर्व रोग ते हर जन रहत, वंदन कीर्तन केवल बख्यान, गृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की पासा, पार वरम की जिस मन भूख, नानक से न लागे दुख, जिसको हर प्रमंच ते आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न कि जन्मे न किच मरे, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सकल मैं आप, अनेक जूत रचता पुथाप, बनासी नाही किछ कांड, धारण तारे हो ब्रह्मांड, अलखपे पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार दुरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण,
प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे में ले कृपाल गुरु का सब जप निहाल उनकी सेवा सो इलाके जिसनु कृपा करे बड़ भागै नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किछ करे सुप्रभ कह रंग सदा सदा वसै हर सांग सह सुभाय होवै सो होए करन हर पछाण है सोए प्रभु का किया जन बीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस मह समाय होई सुख निधान उन्हु बने आए आपस को आप दिन मान नानक प्रभु जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जन नहार जा कै सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदे टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन वाहे तिस ते बिरथा कोई ना हेरे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभु आपे आप अपन किया कछु न होए जिस प्राणी लोचै कोए तिस बिना ही तेरा किछ काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जो सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस किस का दिया दर्भ है अत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता है जे को होए बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सोजन सदा रोग जो मंदिर को थम है थमन त्यो गुर का शब्द मन अस्थमन जो पाखा नाव चढ़ तरै प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास जो मां ध्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुप्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछ करे सोई सुगमान भूला काहे फिरै अजान कौन बसाई तेरा संग लट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद छेती घर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मां लेहो मन भूल राम नाम हृदय में तो लाद के संतै संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कै सब कोए मुख उजल हर दर कै सोए हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताकै सुध बलिहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध उपर जाइये कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाईए साध संग हर कीर्तन गाइए अनिक विघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै उठ गई संतै दरियाए सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माए पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यूच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रचीत भगत पग सुनिय त्यो लोए जा कह हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सच ही सचा आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप नरेक नरंग किच त्रिगुण ते प्रभिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अस्त वधी अविनाशी ब्रह्मन वैराग मानु की तू प्री त्याग किसते पर नाही किच कोई सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक कह मन हो नराव मन सपून सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरन जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जाने होर अनदरू मंगल सजा कह सर्व थोक सुनिय करता कह राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपेस्तर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरु का किनंत ना पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे पिता के जन्म के जाने भूत सगल पुरुए अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए ऊंच नीच जिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जा नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिरकिनो बस्तार पर्व विनाशी कंकार नाना चल करे किनवाए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार
नाम के तारे पुरिया सपावन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जा का सत्य स्थान पुरुष सत केवल प्रधान कर तू सत सत जा की बाणी सत पुरुष माह समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदायी विश्वास सत नान गुरु ते पाए सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझै जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सतु आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने की या नानक ज्योत भाव है सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्मा जिन बुझिया जसाया स्वाद प्रभ कै रंगराज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुकाटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत भेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिस ते उपजया तिस माहि समान बस्त माहिले बस्त गडाई ताको भिन्न कहना जाई बुझै बुझनहार विवेक नारायण विले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारै नानक सो सेवक साथ साथ सुमारै अपने जन का पर्दा ठाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत में तो कोई न लखे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उचते उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दाद इस प्रगटाया नीकी कीरी महकल राखे पसम कर लश्कर कूट लाखे जिसका सास न काटता पोता को रख देकर हाथ मानस जतन करत बहुत इसके करत बिरथे जात मारन रखे वरन कोई सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबलख विडानी बारंग बार बार प्रभु जपी है पी अमृत मन तंत्र पी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके चवर नाही दृष्ट आया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंत्र नाम मै नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सदकाम बोलो जस जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करै भगता तुम कै चाहे प्रभ अपने सो रह सुमाए जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहक न जानो आठ पहर प्रभ से हजूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी उठ ले हे मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व तो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावै तिसके दर सपा मिटावै वरसियानु सगली छाड़ ति जन की तू सेवा लाग आवन जान होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाओ तिस कै संग सुखुदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै
सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सुवारै, सतगुर सिख का हलत पलत सुवारै। नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै, गुर कै गृह सेवक जो रहै। गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कौ कर कछ न जनावै। हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बिचै सतगुर कै पास। तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए ने कामी। तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जसाप करे। नानक सो सेव गुर की मतले, बीस बिसवे गुर का मन मानै। सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ। अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता। आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म। एक है आप नहीं कछ परम, सह सियानप लया न जाइए। नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुन कर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिसलै मिलाए। जी भाए कुस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण बवे। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनिक भगत बंधन नित करहै, चरण कमल हृदय सिमरहै। सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने।

चाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपजे सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन में रखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठाड वरताई, आनंद भया दुख न ठिपाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूरन उपदेसे। पाओ चुका निरपाओ हुए बसे, सगल व्याद मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, सा संग जपना मुरारी। थित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियोही, कलातार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।

पैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत। जब अपने आपा पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम, अपन खेला वरतीजा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी, जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर का कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडार कवन कत डरे, अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुखे अपने आसन तह जन मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत गुचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेका, जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। अपना पापी चर जा नानक अपन रूपा पी पर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कौकीश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तय किसह भूख कवन तृप्तावे, करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप पितर सुत पाई, जय सर्व कलाया पै परवीन तै वेद कतेव कहा कुचीन। जब अपने आप आपुर तारे तो सगन अपसगन कहा विचारे, जय अपन ऊच अपन अपनेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन आप, जय अचल अछेद भेद समाया ऊहा किसह व्यापत माया। आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश, जय कै एक एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपना पाप त्यारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत उच दे उचा नानक आपस को आप पह पहुँचा। जय अप्रच्यो प्रपंचकार त्यो गुण में किन्नु विस्तार, पाप पुन तै पही कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल ओ मैं मोह भरम पै पार, दुख

दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताके निकट नयावत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक

नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक कट माही, अनिक रंग नाना दृष्टाही। नावनित अमृत प्रभ का नाम, देही में है इसका विश्राम। सुन्न समाद अनहत्यनाद, कह न जाई चर्ज विस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर

सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रगति सगली उत्पत, तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एक अंकार, निकल लकी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर, अंतरगा जिस आप जनाए, नानक तिस जनिया बुझाए। सर्वभूता वरतारा, सर्व नैना पेखनहारा, सगल समग्री जा कातना, आपन जस आप ही सुनावन, जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कह मद लिप्त रह, जो किछ कहना सुआपे कह, आज्ञा आया वह आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता लय समाए। इसते हुए सुना ही बुरा, और कहो कि न कछ करा, भला कर तू तत्निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, भूत भूत अपन संग राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर हुए ता सोजी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने ते सदा सुख हुए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पुतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस पर सा सब जगत राया, जन आवन का यह सुभाव, जन कै संग चित आवै नाउ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित्य त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मांग, आप छोड़ बेनती करहु, सास अगन सागर तरहु। हर तन के पर लेहो पंडार, नान गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, सास संग पज परमानंद।

सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

दया दास दान जे को पावा तल का मान सुनया मन्या मान की सा पाओ अंतरगात तीर संभाल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय वैण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मान चाओ कवण सो वेला वक्स कवण कवण सत कवण वार कवण सिरती माहो कवण जस होआ आकार वेल ना पाइया पंडती जे होवा लेख पुराण वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान सत वार ना जोगी जान रुत माहो ना कोई जा करता सेठी को साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सा लाहे क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखा एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवा नानक जे को आपाओ जाने अगा गया न सोहै पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल सके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात लिखा होए त लिखिया लिखा होए वणास नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला है एति सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवहै समुंद न जानिया है समुंद सहा सुल्तान गिरहा सेती माल सन कीड़ी तोल ना होवने जे तस मनो न विसर है अंत न सेती कहन न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापा क्या मन मंत अंत न जापा कीता आकार अंत न जापा पारावार अंत कारण केते बिल्ला है ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तस ऊंचे काओ जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक ददरी कर्मे दात बहुता कर्म लिखया ना जाए वड्डा दाता तेल ना समाए किते मंग है जोध अपार कित्या गणत नहीं विचार किते खाप सुट है बेकार किते लै लै मुकर पा है किते मूरख खाही खा है कित्या दुख भूख साध मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणा होए होर आख न सकै कोए जे को खाए को आखण पाए वो जाणा जेतियां मोह खाए आपे जा...

मात मान बौद्ध तीर्थ घड़िया सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तीर्था होर न कोई होर तीर्था जोर महाबल सूर तन महराम रहया भरपूर तीर्था।

मन माह चथा भगत वसह के लो पर है आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वस निरंकार कर कर वेखा नदर निहाल तथा खंड मंडल वार भंड जे को कथा तो अंत न अंत तथा लो लो आकार जेव जेव हुकम

सारी भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाज में थी चौपाई, हमरी करो हार दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चानन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पार, हमरे दोष सब तुमका वहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो, सुखी बस है मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दया करिए, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें झाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं तो तुमसे पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मन काल का त्रास भरिया, हू जो सदा हमारे पच्छा, सरिया तुझो करियो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत साहे प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंसा, तुम हो पुरी चदर दर कंता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए सर जीव अवतरा, काल पाए कर बिछन प्रकाशा, सकल काल का किया समासा, जवन काल जोगी सब कियो, बेदराज ब्रह्मा जी उठियो, जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जच्छन उपजायो, आदान ते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार सत ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकान को सब गुण सुख दियो, सत्रन को बल मो बाद कियो, काट काट के अंतर की जान, तो भले बुरे की वीर पहचान, चीटी से कुंचर सूला, सा पर कृपा देट कर फूला, सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, काट काट के बट बट की जाना, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा सात तब देह अपारा, जब आकर्क कर तो हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह सर सब हूँ, जेते बदन सेठ सब सारा, आप अपने बुझ उचारा, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद हर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभव, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको फेब न पावत भेदा, ताको कर पाहन उन मानत, महामूढ़ का भेद न जानत, महादेव को कह सदा सेव, निरंकार का चीनत न फेब, आप अपनी बुद्ध है जेती, बर्णत पहन पहन तो देती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहे बिद सजा प्रथम संसारा, एक का रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राम कहे कूपा, अंड जजे रज से तज कीनी, उद भुज खान बहुर रज दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पहो शंकर अकैठा, सिगरे स्लेट दिखाए अचंभव, आज वह स्वरूप से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवा तुद पाता, सकल मलेज करो रण करता, जे आज तुझ तब सर नहीं परे, तनके दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन भग परे तिहारे, तनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार से आह, ताके काल निकट न आह, रक्षा होए सहे सब काला, दुष्ट रहट टर तत्काल, कृपा देट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रद्द सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकै न कोई, एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फाते ताहे उबारा, जन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोगते रहा, खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दलो उबारी, सर्व ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोगते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता, केलवक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छह करता, सरिया सोजा पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ हर काला, मान बाज तफाल पावे, सोई दुख न तिस ब्याप्त कोई अड़ल, सुने गंग जो याह सुरस ना पावई, सुने मूढ़ चत लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाव निकट न चंदर के रहा, हो जो या की एक बार, चौपाई को कह चौपाई, संबद सत्र है सहस प्रजय, अर्ध सहस फुन तीन कहिजय, पादरव सुधी अश्मीर वारा, तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गह जब ते तुमरे, तब ते को आंग तरे नहीं आने हो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमरत सातर भेद सब बो भेद कह हम एक न जान्यो, सरी असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो है बखान्यो, दोहरा सगल दो

है सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी त कच्ची सतगुरु बज हो होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आग बखाणी, हर हर नित कर।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखहु राखनहार दयाला, नानक

0: चार श्लोका नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की धुनी श्लोक महला पहला।
1: बलहारी गुरु अपने दियो हाड़ी सदवा और जिन मानस ते देवते की एक कत न लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। महला पहला
0: नानक गुरु न चेतनी।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबाण सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखे लाख करोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सुकच निकच
1: महला पहला बड़ी बड़ियाई जा वड्डा नाओ बड़ी बड़ियाई जा सच न्याओ बड़ी बड़ियाई जा निचलताओ बड़ी बड़ियाई जाने लाओ बड़ी बड़ियाई बुझे सब आओ बड़ी बड़ियाई जा पुछ न जात बड़ी बड़ियाई जा पे आप नानक कारना कथनी जाए किता करना सरुर जाए महला दूजा।

गुस्सा हो जा गया गुरमन सूता पग पे ताना अपना किया कमाणाल मल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधा पद गवाई विणना मैं किस्सा न पाई रह बेबाणी मणि मसाणी अंद न जाना फिर पछताणी सतगुर भेटे सो चुपाए हर का नाम मनुसाए नानक नजर करे सो पाया संदेश ते ने केवल आओ मैं शब्द जलाए।

ज्ञानी न तेवा जेवा वे रूप करे सिगार उचे कूके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित इकमत हुद संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवा वह मंगे मोह द्वार जती इसरा वह जुग ना जाने छड़।

निर्भव निरंकार निर्वैर पूरण ज्योत समाई, नानक गुरविन भरम न भागै सच नाम वडियाई। सोरठ महला पहला दो तुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंट चौबारा, सगल भवन की

मुक्त तुम्हारी तेरा रूप कनेहा इकत रूप फिरे परछन्ना कोए न किसी जेहा अंडज जेरज उत्पुज सेत।

नात स्वरूप वर्ण नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान रहाओ, नात समात पिता सुत बंधप, नात

नाम विसार अनरस लोभानी फिर पछुता ही अपागा रहा। आवत को हरख जात को रूब है यो दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग भोग वै गुरमुख सुख।

विषमादी दुख विसरै सुख होई जियो। पीवो अप्यो परम सुख पाइए निज घर वासा होई जियो। जन्म मरण भव भंजन गाइए पुनरप जन्म।

अन दिन गुण गावह नित साची, गुर कै शब्द सुहाया। मेरे ठाकुर हम बारिक शरण तुम्हारी, एको सच्चा सच तू केवल आप मुरारी। रहाओ जागत रहे तिनी प्रभ पाया, सबदे हो मैं मारी, गिरही मह सदा।

मनमुख मुक्त गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, किस पिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया।

तुके। सतगुर मिलिया उल्टी पई भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। सो गुरु सो सिख है भाई,

हर रस साधन आया, संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनु आप मिलाए, हर रस पी जन सत।

आपे अंडज जेरज सेतज उत्पज आपे खंड आपे सब लोय आपे सूत आपे बहुमणिया कर सकती जगत परोय आपे ही सूत धार है प्यारा सूत खिंचे तह ढेरी होय मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोय सतगुर विच।

तिस जेवड़े अवर न कोए, सब घट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए, नानक गुप्त वर्त दा प्यारा। गुरु

तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखै पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साह जिहड़ा अंबाले के नज़दीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि ये लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साह बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछया, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनूं मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनों पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नूं मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जदों इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साह कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आक दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई, साडे तरम दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।